0: Yo. Radio Pub. हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
1: सूचित किया जाता है कि अनुराधिका, डेविड, जेनेट और जोसेफ की माँ, ज्वाला पाल की पत्नी मेंगरी ऑकलैंड की तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार 17 तारीख अगस्त को सुबह 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 02104342833 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि अनुराधिका, डेविड, जेनेट और जोसेफ की माँ ज्वाला पाल की पत्नी मेंगरी ऑकलैंड की तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार 17 अगस्त के दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 02104342833 पर कॉल कर सकते हैं।
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: वेदर अपडेट।
1: मौसम तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज सुबह सुबह तो बादल छाए थे लेकिन ये साफ होता नज़र आएगा एज वी गो फर्दर इनटू द डे। आज दिन में टेम्परेचर 17 डिग्रीज होने वाला है, ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज तक जाने वाला है। कल के लिए, कल सुबह के समय कुछ धूप आपको देखने को मिलेगा लेकिन शाम होते होते शायद कुछ आइसोलेटेड शावर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कल भी अराउंड 16 डिग्रीज दिन में टेम्परेचर रहने वाला है।
2: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।

क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में आप पहले भी आए हैं? नहीं ना? तो इस एक बार की जिंदगी में हमें अकड़ कर नहीं रहना है, खुद के साथ और दूसरे के साथ भी थोड़ा नरम रहा करो, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा होना बस एक बार की ही कहानी है। आए, कुछ किया और चले गए, लेकिन किया क्या ये मायने रखना चाहिए। शायद किसी की मदद कर दी, शायद किसी की ज़िंदगी आपने किसी तरह से आसान कर दी। भाई, यही तो इंसानियत है। सोचिएगा इसके बारे में और यूं ही सोचते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमारे साथ में शामिल हो जाए, क्योंकि मैं जिकाश शामिल हो चुका हूं ऑन रेडियो पब। आज है 15 तारीख अगस्त और 12:10 हो चुका है। तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी मैं आपके साथ में शामिल हो चुका हूं फ्रॉम 12 PM राइट थ्रू टिल 6 PM, आपका मनोरंजन कराने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, और इधर उधर की कुछ रोचक जानकारियाँ भी आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो यूं ही बस मुस्कुराते हुए ये सफ़र हम आज तय करने वाले हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? आई होप योर वीक वॉज अ सक्सेसफुल वन, और वीकेंड अब आप आराम करने वाले हैं, शायद पार्टीज़ में जाने वाले हैं, शायद कुछ इवेंट्स है, शायद कहीं पर आप एज अ गेस्ट जाने वाले हैं, या फिर होस्ट कर रहे हैं आज आप कुछ पार्टीज़ या इवेंट्स। जो भी हो, ऑल द बेस्ट आपको हम विश कर रहे हैं फ्रॉम 104.2 FM एंड ऑन रोबा। स्वागत कर रहे हैं आपका। क्योरा

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: आपके कम्युनिटी में क्या कुछ होता है इसकी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। वैसे इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट जिसके बारे में आप तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो गेट इन टच विद अस। यू कैन कॉल अस ऑन 0800-004-866 या फिर सेंड अस एन ईमेल buzz@humfm.com पर एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। The New Zealand Carrom Association invites community to the 4th New Zealand National Carrom Tournament on 22nd and 23rd of August. ये हो रहा है Birkenhead Scouts Hall पर। चाहे आप किसी भी स्किल लेवल पर हो, चाहे बिगिनर हो, लर्नर हो या फिर आप प्रो लेवल पर खेलते हो कैरम, तो यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन विजिट द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक या फिर यू कैन कॉल और मैसेज द NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोंगा ऑन 021-090-85067 पर। सैंडी एंड रुजबे they dove deep into Pankaj Monga jo ki NZCA ke president hai and some common myths ko debunk kiya gaya surrounding the game and discuss why national tournaments are essential for keeping the classic sports alive. Chahe aap ek season player ho ya phir complete beginner ho jinhone abhi tak carrom touch bhi nahi kiya hai, you can learn the game kyunki ye game sabhi ke liye hai. To know more about this awesome podcast जो carrom association के president के साथ में हुआ है, you can text CB on 5599 to listen to the episode. इसके अलावा Grand Trikona Kirtan Night ये होने जा रहा है Auckland भक्ति सत्संग के द्वारा, जिसमें आप सुनने वाले हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आने वाले अच्युतन नायर को, Auckland के नितिन गाउंडर और लोटोका के अश्विन कुमार अपा। सो ये त्रिकोना कीर्तन नाइट होगा ऑन द 21st ऑफ अगस्त आने वाले शुक्रवार को एट द वैदिक सेंटर पापाटोटोए। टिकट $20 है। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं या फिर कोई भी इंक्वायरीज है, यू कैन कॉल अश्निल ऑन 021-066-7236.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में। उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: आज बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है एंड मैनी मैनी ऑफ यू वुड नो वाई. तो क्या आप जानते हैं? इफ़ यू नो लेट मी नो. 5599 पर आप हमें बताएं कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है. 15th of August, ऐसा क्या हुआ था आज के दिन पर? सोचिए सोचिए, ऐसा ना हो कि भैया देश छोड़कर आ गए हैं एंड देश ही छूट गया है. इसके बारे में आप सोचिएगा और लेट मी नो कि आज का दिन क्यों बहुत बहुत ही ख़ास है. For almost, I would say, 90 if not 95% of us listening right now, आज का दिन बहुत ही खास है. 5599 पर अपने नाम के साथ आप बताएं कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है. Alright, that's what you have to do. 5599 is our platform जहां पर आप हमें बता सकते हैं कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में हम बातें करेंगे थोड़ी ही देर में. वैसे फिल्म बंटवारा ये आई हुई है सिनेमाज में. Have you checked that out? इसके बारे में भी हम बातें करेंगे बस इन अ फ्यू मिनट्स.

Alright, सवाल हमने किया था कि क्यों आज का दिन बहुत ही खास है. 15th of August है आज, and this was the day जब इंडिया ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ था. भगा दिया था ब्रिटिश वालों को, इंग्लैंड वालों को इंडिया ने, और असाय और रिलीफ इंडिया के ऊपर या फिर पीपल एक्सपीरियंस किए थे बैक इन 1947. तो सही जवाब आप सभी ने दिया है. नाउ देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कन्फ्यूजन. टुडे इज़ 15th August एंड 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था. तो आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इज इट द 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या फिर 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? नाउ यू कैन डू योर मैथमेटिक्स, और दूसरी ओर लॉजिकली आपको सोचना है, इज इट द 79th इंडिपेंडेंस डे टुडे या फिर इज इट 80th इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया? 5599 पर अपना जवाब आप लिखकर भेज सकते हैं. श्रिया, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज टुडे द 79th इंडिपेंडेंस डे या फिर 80th इंडिपेंडेंस डे? 5599 पर. वैसे जितने भी इंडिया वाले हैं, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप सभी को वंदे मातरम और चक दे इंडिया. अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुकटुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
5: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
7: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: Award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
3: For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: Make your space your own at Mitre 10. Upgrade your storage with a MaxRack Heavy Duty 5 Shelf Wire Unit, now 165. And get your fire going faster with Samba Fire Lighters. Grab 236 packs for $7. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
12: You filled the pinata before I sealed it, right?
13: No, you did.
12: I thought you did.
14: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.

Yo. Big Radio Pub. Yeah. एक बजकर एक मिनट हो चुका है एंड रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. पिछले घंटे पर हमने सवाल किया अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस डे. 1947 15th ऑफ अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था और काउंटिंग फ्रॉम देन 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. लेकिन टुडे इज़ द 80th इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था डेट वॉज द इंडिपेंडेंस डे. और इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए we have come to the 80th Independence Day after completing 79 years. So, agle saal ya phir kal se we'll be stepping into the 80th year. 80th year shuru hoga aur 79 years complete ho chuka hai. Lekin today commemorate kiya ja raha hai the 80th Independence Day after completing 79 years. Iske bare mein aap behas kar sakte hain. I'm open to some dialogue agar aap chahe. I've posted a video on Facebook as well. To wahan par bhi ja kar aap comment kar sake and just show your love, show your appreciation of your forefathers jinhone Bharat ki azadi ke liye bahut bahut mehnat ki hai. Aur agar hum naam lene ko baithe to bhai freedom fighters ke list khatam hi nahi honge. To jitne bhi freedom fighters the, if you are from that lineage, aap sabhi ko hum dhanyawad de rahe hain aur we are grateful that your forefathers, our forefathers fought for freedom and here we are a free country. So, Bharat Mata Ki Jai once again and a very happy Indian Independence Day to one and all. Shayad aapke ghar par iske liye kuch celebrations hai. Do let us know. Aapki khushiyon mein hum zarur shamil hona chahenge. Hum par aapke saath hain Jikash.

इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के बारे में हम बातें ना करें. कल वाज 14th अगस्त एंड कल वाज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे. तो जितने भी आवर फेलो पाकिस्तानीज हैं हियर इन न्यूजीलैंड और अगर आप हमें सुन रहे हैं, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल. वैसे क्रिकेट की ओर देखें तो फिलहाल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में खेल जारी है. टेस्ट 1 of 2 ये डे 3 में पहुंच चुका है एंड द फर्स्ट सेशन फर्स्ट इनिंग ये जारी है जिसमें बांग्लादेश इज लीडिंग बाय 167 रन्स. और आज शाम 4:30 पर थोड़ी देर में श्रीलंका और इंडिया ये अपना खेल शुरू करने वाली है इन द फर्स्ट ऑफ टू टेस्ट मैचेस. 4:30 PM इंडिया विल टेक ऑन श्रीलंका.

0: Radio Pub. Yeah. You're listening to Chikash.
1: बस मिनट हो रहे हैं एक बजकर कार्यक्रम में. इफ यू हैव जस्ट जॉइंड, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा. फर्स्ट इनिंग्स ये जारी है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश. 179 रन से बांग्लादेश अभी फिलहाल लीड कर रहा है. वैसे रग्बी की ओर नज़र डाले तो नेशनल प्रोविंशियल चैम्पियनशिप ये वीक 3 में पहुँच चुका है एंड थर्सडे को नॉर्थ हार्बर की जीत वेलिंगटन से 47.27 से हुई. नॉर्थलैंड ने तारनाकी को 42.20 से पराजित किया है. आज द बिग वन कैंटरबरी एंड बे ऑफ प्लेंटी हैपनिंग एट 2:05 PM. उसके बाद ऑकलैंड और हॉक्स बे आज खेलने वाले हैं एट 5:05 PM. इन द लास्ट मैच फॉर टुनाइट मनवातु एंड ओटागो प्लेइंग एट 7:10. कल दो मैचेस होने वाले हैं साउथलैंड और वाइकातो के मध्य में 2:05 PM कल शाम को. एंड देन काउंटीज टेकिंग ऑन टेस्मैन इन द लास्ट मैच ऑफ वीक 3 इन NPC टुमारो एट 5:05 PM.
2: प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी. पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी. मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है. कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी. मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी. मैं कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी बहुत ही फनी. मेरे गोयाट के बैक कान टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी. टिप्पणी पे न करू टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू. मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिरूं, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिरूं. जो भी जलता है उसको फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं. दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही. उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं.

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: Come on, babe.
1: Yo.
0: Big Radio Pop. Yeah.
2: रेडियो पब में जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. सवाल हमने आपसे किया था कि आप अगर फ्राइड चिकन खाना पसंद करते हैं एंड यू हैव योर फेवरेट जॉइंट जहाँ से आप फ्राइड चिकन लेते हैं, चाहे KFC हो. आई पर्सनली लाइक चिकन एंड KFC और इनिशियली आई डिड गो टू पॉपाइज, लेकिन माय डॉटर शी हैज़ एन आई फॉर डिटेल एंड शी पॉइंटेड आउट व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू पॉपाइज कि the chicken at Popeyes is cooked in beef tallow. Beef ki charbi mein, beef tallow mein chicken ko fry kiya jata hai in Popeyes. Now this is just an information for people out there who do not consume beef products. Ki shayad aapne abhi tak nahi dekha hoga kyunki bahut loudly isko market nahi kiya jata hai. Bahut hi subtle writing mein boards par likha hota hai, ekdam niche. थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज यू विल मिस दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि पोपाइज कुक्स इट्स चिकन इन बीफ टेलो. तो भाई जो भी नॉन बीफ ईटर्स है, खबरदार, सावधान, आप ज़रूर इस बात का ध्यान दें. वैसे आई एम नॉट जजिंग एनीवन, नॉट जजिंग हियर एट ऑल. जो भी खाना चाहे खा सकता है भाई, अपनी मर्जी के मालिक है सब, लेकिन इन्फॉर्म रहना बहुत ही ज़रूरी है. So there was some little information about Popeyes. They cook their chicken in beef tallow. And I looked up KFC, McDonald's and Burger King. They stopped using animal fat or animal oils for cooking back in the 1980s and 1990s. While Popeyes, they love, people who love Popeyes, they know about it. Aur agar aapne socha tha iske bare mein, do know ki Popeyes cooks its chicken in beef tallow.

0: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
1: Indelible Homes, your building expert.
2: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
4: The beat of Bollywood
5: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है
4: Radio Pub.
6: It is Indian Independence Day and also आज पारसी न्यू ईयर भी नवरोज भी सेलिब्रेट किया जा रहा है तो जितने भी हमारे पारसी लिसनर्स हैं मेहरजाद आपको थैंक यू फॉर योर मैसेज एंड आपको भी हैप्पी पारसी न्यू ईयर नवरोज आपके लिए आपको मुबारक हो

अपने बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स हम पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ रेडियो पर आपका मजा आप ले रहे हैं. नेशनल रग्बी लीग इज नियरिंग इट्स कंप्लीशन ऑफ राउंड रोबिन मैचेस. दिस इज वीक 24 ऑफ 27 जिसके बाद में नॉकआउट स्टेजेस में हम पहुंच जाएंगे. तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द टेबल एंड टेबल पर रूस्टर्स विद 38 पॉइंट्स पहले स्थान पर है. पैंथर्स फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड 36 पॉइंट्स को लेकर सेकंड पोजीशन पर और वॉरियर्स दे आर एट द थर्ड पोजीशन विद 34 पॉइंट्स क्लोज बिहाइंड. वॉरियर्स आर डॉल्फिन्स विद 34 पॉइंट्स एज वेल लेकिन पॉइंट्स डिफरेंस में डॉल्फिन्स बहुत बहुत पीछे है अबाउट 100 पॉइंट्स डिफरेंस. तो आज शार्क्स और रेडर्स इन ये खेलने वाले हैं एट 5 PM. ईल्स और काउबॉयज टुडे एट 7:30 PM एंड ब्रोंकोज एंड वॉरियर्स अ क्रैक ऑफ अ मैच ये होने वाला है 9:35 PM. अगर ये मैच को वॉरियर्स जीत जाती है दे कैन पॉसिबली क्लाइंब ऑन टू द सेकेंड पोजिशन. सो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली अब द वाज वॉरियर्स ये खेल जीत जाए अगेंस्ट ब्रोंकोस ब्रोंकोस एट 9:35 PM. नाइट्स और टाइटन्स ये 4 बजे खेलेंगे एंड देन 6:05 PM पर वेस्ट टाइगर्स और ड्रैगन्स आमना सामना करने वाले हैं.

0: weather update.
1: Cloudy periods with isolated showers until evening. Aaj din mein tapman 17 degrees pahunchne wala hai. Overnight temperature aaj 12 degrees rahega. That's for 15th of August. Kal Sunday ke liye bataya gaya hai ki partly cloudy, isolated showers, possibly heavy in the afternoon around north of Auckland Harbour. Radio Pop. Hey, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. 2:02 हुए हैं. अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, भाई थे कहाँ आप, 2 घंटे हो गए. आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम 104.2 FM और रोबा के मार्फत से. जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. क्योंकि रोबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए हमने क्रिएट किया है, ताकि आप मज़े ले सके नॉट ओनली ऑफ आवर ऑन एयर प्रोग्राम्स, पर हमारे म्यूज़िक प्लस स्टेशंस का भी आप ज़रूर मज़ा उठाएगा. तो म्यूज़िक प्लस स्टेशंस के बारे में बातें करें, हमारे तो बहुत सारे हैं. एंड द वन दैट आई वुड लाइक टू एडवोकेट फॉर नाउ इज़ द फिजी भजन्स एंड फिजी कीर्तन संग्रह. अगर आप एक कीर्तन गायक है, कीर्तन सीख रहे हैं, या फिर यू जस्ट अडो कीर्तन्स फ्रॉम फिजी, तो भाई आप फिजी कीर्तन संग्रह लुकअप कीजिए ऑन रोवा एंड यू विल बी अमेज्ड एट द नंबर ऑफ कीर्तन्स एंड द आर्टिस्ट दैट वी हैव पुट ऑन देयर. इसके अलावा फिजी भजन्स वर्ल्ड का पहला 24/7 फ्री फिजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर आप भजन्स इंजॉय कर सकते हैं फ्रॉम अ रेंज ऑफ आर्टिस्ट जो फिजी से है, जो फिजी से निकल कर अभी अन्य देशों में रह रहे हैं. तो ऑल दी भजन लवर्स, फिजी भजन्स प्लेटफॉर्म इज द वन दैट यू हैव टू गो टू ऑन रोवा. अगर आप रोवा पर मुझे अभी सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू नो कि आप कहाँ पर है. डू लेट मी नो. रोवा पर आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि यू माइट बी आउट ऑफ द 104.2 रेंज. तो अगर आप 104.2 रेंज से बाहर है, तो आप भाई है कहाँ पर, किस इलाके में है आप, डू लेट मी नो. 5599 पर अपने नाम के साथ अपना लोकेशन हमारे पास आप भेजिए. स्वागत कर रहे हैं आपका ऑन दिस आवर ऑफ रेडियो पब. क्योरा

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: आज शाम को ब्रोंकोस और वॉरियर्स का आमने सामना होने वाला है. तो ऑल दी रग्बी लवर्स या फिर इफ यू आर जस्ट गेटिंग इनटू रग्बी लीग, आपसे सवाल है. सवाल ये है कि व्हाट स्लोगन, व्हाट काइंड ऑफ चीयर डू वी यूज टू चीयर ऑन आवर वॉरियर्स टीम. शायद आपने इसके बारे में सुना है, शायद कई जगहों पर आपने बिलबोर्ड्स पर देखा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये है क्या. तो वॉरियर्स टीम को चीयर करने के लिए कौन सा स्लोगन, कौन सा चीयरिंग स्लैंग यूज किया जाता है. 5599 पर अपना जवाब हमारे पास भेजिए विद योर नेम एंड डू लेट मी नो कि आप कहां पर है. एंड इफ यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम ऑन रोवा ऐप तो जरूर बताएं कि किस इलाके में अभी आप है. एनजेड नावुआ ये क्लब है एंड दे आर डूइंग देयर बारबेक्यू फंड रेजिंग टुमारो. This is happening at 5A Portage Road, Papa Toyota में. And for the fundraising, ये barbecue कर रहे हैं जिसमें 2 lamb chops, 1 sausage, 1 egg, 1 egg sub में 2 lamb chops, 1 sausage, 1 egg, cassava and salad शामिल रहने वाला है. प्रनील और राजीव को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. प्रनील को कॉल करें ऑन 0210209444, दैट इज 0210209444 पर इफ यू वांट टू सपोर्ट द एनजेड नावुआ क्लब डूइंग देयर बारबेक्यू फंडरेजर टुमारो 16 अगस्त को दिन में 12 से लेकर 3 बजे के बीच एट 5A Portage Road पापा टोयोटा में.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ. अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स

0: Radio Pub.
1: सवाल हमने किया है कि वॉरियर्स को चीयर ऑन करने के लिए कौन सा स्लोगन, कौन सा चीयर हम यूज़ करते हैं। 5599 पर आपको जवाब भेजना है। सिर्फ दो ही सही जवाब आए हैं। ऐसा लग रहा है कि सुनने वालों में से बहुत कम है जो नेशनल रग्बी लीग या फिर रग्बी लीग को फॉलो करते हैं। भाई, फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारी ऑल ब्लैक्स यूनियन में नाम कमा रही है, उसी तरह से लीग में वॉरियर्स भी ये बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो वॉरियर्स को चीयर करने के लिए कौन सा स्लोगन, कौन सा स्लैंग यूज़ किया जाता है, 5599 पर अपना जवाब दे। एंड लिसनिंग या फिर फॉलोइंग रग्बी लीग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस साल रग्बी लीग वर्ल्ड कप भी होस्ट किया जा रहा है बाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पापुआ निगिनी, और इसके लिए टिकट्स आप अभी से खरीद सकते हैं। हेड ऑन टू ticketmaster.co.nz एंड यू विल गेट ऑल द फिक्स्चर्स जो होने वाले हैं एंड दे टिकट्स अलग अलग मैचेस के। यू कैन चेक इट आउट एंड फाइंड टिकट्स एंड बुक टिकट्स फॉर योरसेल्फ इफ यू लव रग्बी लीग। एंड रग्बी लीग की बातें करें तो रग्बी यूनियन ऑस्ट्रेलिया में शायद उतना विख्यात नहीं है, फिर उतना फेवर नहीं है जितना रग्बी लीग, क्योंकि बहुत सारी टीम्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया दैट प्ले इन टू रग्बी लीग और कंपेयर टू यूनियन उतनी ज़्यादा टीम ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो आप बताएं कि वॉरियर्स को चीयर करने के लिए कौन सा स्लोगन, कौन सा स्लैंग यूज़ किया जाता है। 5599 पर अपना जवाब भेजिए। पलक, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। वैसे ऑल ब्लैक्स ये अभी दौरा कर रही है साउथ अफ्रीका का एंड दे हैव प्लेड सम मैचेस। DHL स्टॉर्मर्स को इन्होंने 38-21 से हराया ऑन द 7th of August। 11th of August को ऑल ब्लैक्स ने हॉलीवुड बैट शार्क्स को हराया 54-0 से एंड आज बाद में चलकर ऑल ब्लैक्स और वोडाकॉम बुल्स आमना सामना करने वाले हैं। नेक्स्ट वीकेंड द फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑल ब्लैक्स खेला जाएगा इन जोहान्सबर्ग।

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ कि शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हैं, ये समझो कि यार का सताया हुआ है, नॉट नेसेसरी कि यार का सताया हुआ ही शराब पिए और उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि शराब ही ज़्यादा हो गई हो या फिर कमज़ोरी आने लगी हो। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा?

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
5: You filled the pinata before I sealed it, right?
6: No, you did.
5: I thought you did.
7: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast malang jaan.
10: Yo.
11: Radio Pop.
12: रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं, मैं हूं जिकाश और आपका साथ देता यूं ही राइट टिल 6 पीएम पर, यहां पर मैं रहने वाला हूं। सवाल हमने आपसे किया है, हमारी वॉरियर्स टीम जो खेलती है नेशनल रग्बी लीग में अगेंस्ट दी बिगर टीम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक लौती टीम है जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दे हैव बीन क्वाइट सम न्यूज़, क्वाइट सम हाइप ओवर सम बिगर नेम्स ट्राइंग टू या फिर होपिंग टू गेट इन टू दी वॉरियर्स जर्सी। सवाल हमारा ये है कि वॉरियर्स को चीयर ऑन करने के लिए कौन सा स्लैंग या फिर स्लोगन यूज किया जाता है? 5599 पर आपको जवाब देना है, एंड आई गॉट सम आंसर्स हियर। कुछ लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, भाई प्लीज़ व्हेन यू आर मैसेजिंग डू राइट योर नेम, जानकर अच्छा लगेगा एंड इट विल बी ईजियर टू एड्रेस यू। रजनील है, थैंक यू सो मच, आपने कहा है कि दैट्स माई टीम एंड आपने स्लोगन भेजा है। पोर्ट वेकातो से विम, आपने कहा है कि नाइस प्रोग्राम, थैंक यू आपके साथ के लिए एंड आपके मैसेज के लिए। कुछ लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं लिख रहे हैं, प्लीज़ डू सेंड योर नेम्स। वॉरियर्स को चीयर करने के लिए कौन सा स्लोगन इस्तेमाल किया जाता है? 5599 पर अपना जवाब हमारे पास आप भेजें। रग्बी लीग वर्ल्ड कप ये आज से पूरे 2 महीने बाद शुरू होगा, 15th of October को एट 10:05 PM ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कीवीज ये आमना सामना करने वाली हैं एट द अलायंस स्टेडियम इन सिडनी। 10:05 PM पर थर्सडे 15th October को ये खेल होगा और फिर सामोआ एंड फ्रांस टेकिंग ऑन ईच अदर ऑन द 16th of October इन सिडनी एज वेल। तो वॉरियर्स का स्लोगन ये क्या है? पूल सी और देखें फॉर वर्ल्ड कप, पूल ए में है ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी एंड न्यूजीलैंड। पूल बी एंड सी में है इंग्लैंड, फ्रांस, लेबनान, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ एंड टोंगा। द टॉप टीम, टॉप टू टीम्स फ्रॉम कंबाइंड टेबल ऑफ बी एंड सी विल प्रोग्रेस इनटू द सेमीफाइनल्स एंड द टॉप टू टीम्स फ्रॉम पूल ए विल गो इनटू द सेमीफाइनल्स। तो देखेंगे क्या होता है।

रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं एंड अ फ्यू अनाउंसमेंट्स. Kari Beyond Borders NZ Fashion Week. Get ready for an incredible night of Indian fashion, culture and creativity at New Zealand Fashion Week. Now this is happening Tuesday 18th of August ko, yani ki aaj se do roz baad, at 89 Key Street, Auckland CBD mein, at Shed 10 Queen's Wharf from 8:30 PM. Ye ek international Indian design showcase hai right here in Auckland, jahan par you'll get a rare opportunity to see Indian fashion on the New Zealand Fashion Week runway. Kari Beyond Borders, ये क्या है? This brings four leading Indian designers to Auckland, जो showcase करने वाले हैं how the traditional hand-spun, hand-woven fabric Kari is being reimagined in contemporary fashion. A major international fashion name headlining the show is Rajesh Pratap Singh, who is one of India's most influential designers, known for his sophisticated tailoring and modern take on traditional craft. It's more than a fashion show. ये जो शो है इट विल शोकेस एंड इट विल सेलिब्रेट द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड थ्रू फैशन विद फोर डिस्टिंक्ट डिजाइनर्स डेमोंस्ट्रेटिंग द कारी दैट कारी कैन बी लग्जूरियस कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंटल एंड सीरियसली कूल. तो इसके लिए टिकट्स अगर आप चाहते हैं हेड ऑन टू nzfashionweek.com

बस जितने भी लोगों ने टिकट्स लेकर आकर वहाँ पर अपना प्यार दर्शाया टुवर्ड्स दी रामलीला टीम, आपको हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं. स्पेशली मास्टर अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर विजन एंड नॉट फॉरगेटिंग ऑल दी पीपल दैट वर इन्वॉल्व विद दी रामलीला, स्पेशली दी न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट. आप सभी को थैंक यू सो मच हम कह रहे हैं.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
3: 99 Centaur here, with more 99 cent deals this week at Pack and Save. Yeehaw! Ah, come here. Ah, gotcha. Yeah, this isn't my first rodeo. 99 cent week, on now at Pack and Save.
4: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
5: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand, as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.
6: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shuprasad, Kelston.

0: Radio Pub.
1: तीन बजने का आए हैं और इस बार के लिए तनिष्क बख्शी की आवाज़ से हम इस आवा को शुरू कर रहे हैं।
2: दिल वाले गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: फिजी में जारी है फिलहाल the OFC Champions League and अभी थोड़ी देर में या फिर अभी right now रेवा और लेस सिटी ड्वेलर्स की टीमें ये मैदान लेने वाली है एंड द मैच इज अबाउट टू किक ऑफ इन बा बिटवीन रेवा एंड लेस सिटी ड्वेलर्स जिसमें दोनों टीम को ये गेम जीतना बहुत ही ज़रूरी है टू क्वालिफाई एंड गेट इनटू द सेमीफाइनल्स और टेबल की ओर हम देखें तो ग्रुप ए में ऑकलैंड सिटी सेंट्रल कोस्ट टीगा स्पोर्ट और AES वीनस शामिल है ग्रुप बी में ABM Galaxy, Le City Dwellers, Rewa और Tupapa शामिल हैं तो जैसे ही इस मैच में अपडेट्स आते हैं हम आपके साथ भी शेयर करेंगे वैसे अभी आज अर्लियर ABM Galaxy ने Tupapa को 7-1 से हराया है एंड देन टमोरो ऑकलैंड सिटी और AES Venus खेलने वाले हैं दिन में 12 पर द लास्ट मैच फॉर ग्रुप स्टेज विल बी प्लेड बिटवीन टीगर स्पोर्ट एंड सेंट्रल कोस्ट टमोरो एट 3 PM जिसके बाद में teams will march on to the knockout stages. शामिल कर लेते हैं पीटर अनंत थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सलेश आपका भी मैसेज आया हुआ है अंतिम मौका हम आपको दे रहे हैं टू गेट इन टू दिस आवर्स कॉम्पिटिशन जो सवाल हमने आपसे किया है कि वॉरियर्स को चीयर ऑन करने के लिए कौन सा स्लैंग कौन सा स्लोगन हम इस्तेमाल करते हैं इट्स वेरी वेरी कॉमन और बहुत ही बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं अपने कार्स में बम्पर स्टिकर्स इन्होंने डाले हैं और अपने फेसबुक पेज पर ये स्लोगन डालते हैं तो वॉरियर्स को कैसे हम चीयर ऑन करते हैं व्हाट्स द स्लोगन ये आप हमें बताएं

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Yeah.
2: 20 मिनट हो चुके हैं 3 बजकर इफ यू जस्ट जॉइंड आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा नाउ अ फ्यू अनाउंसमेंट्स एंड अ फ्यू कॉम्पिटिशंस जिसमें भाग लेकर आप भी कई सारे इनाम जीत सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द हम बोरिंग कॉल एवरी वीकडे 8 AM 11 AM 1 PM और 5 PM पर हम स्पेशल बोर्डिंग कॉल अनाउंस करते हैं एंड इसको सुनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लिसनिंग टू दैट एंड बोर्डिंग कॉल कॉम्पिटिशन में अगर आप हिस्सा लेते हैं यू विल विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद सोलमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी तो सोने पर सुहागा वाली बात है भाई आपके पास 60 मिनट्स रहते हैं एंड वट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि रोवा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है ROVA That is the app जो आपको डाउनलोड करना है एंड वंस यू हियर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल एट 8 AM 11 AM 1 PM एंड 5 PM एवरी वीकडे आपको जाना है रोवा पर एंड इस कॉम्पिटिशन में हम बोर्डिंग कॉल कॉम्पिटिशन में आपको टाइप करना है बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट बस इतना ही करते आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए यू वॉन्ट अ लिंक टू द रोवा ऐप एंड द पेज आपको बी सी लिखकर भेजना है 5599 पर लेटर बी लेटर सी लिखकर आप भेजें 5599 पर एंड जस्ट लाइक दैट यू विल गेट द लिंक टू द कॉम्पिटिशन पेज तो बस इतना ही करना है फ्लाइट्स आपको मिस नहीं करनी है क्योंकि ये बोर्डिंग कॉल एंड दिस फ्लाइट विल टेक यू टू पैराडाइज कौन नहीं जाना चाहता वनुआतु स्पेशली इन दिस विंटर सोलमन एयरलाइंस को हम थैंक करना चाहते हैं फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु solmans.com आपको विजिट करना है टीज एंड सीज भी अप्लाई होता है इस पर

एशियन फैमिली सर्विसेज। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इनकी एक्सपीरियंस्ड टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट। ये एक नेशनल कैंपेन है जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342, एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं या फिर asianfamilieservices.nz पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ को सही रखना। तो अगर आपको ज़रूरत है किसी भी मदद की या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर फ्रेंड को ज़रूरत है, डू सीक हेल्प ऑन एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर या फिर विजिट asianfamilieservices.nz के वेबसाइट पर।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: रक्षाबंधन के लिए क्या आप तैयार हैं? इफ आप तैयार नहीं हैं तो आपकी तैयारी के लिए हम आपको देना चाहते हैं $250 एंड दैट टू नॉट टू वन पर्सन पर दो लोगों को। तो भाई अभी थोड़ी देर में हम लाइंस खोलेंगे एंड आपसे हम चाहते हैं कि आप हमारे पास कॉल करें एंड अपना ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू दे ऑफ योर ब्रदर और योर सिस्टर। अपने सिबलिंग का आप हमें बताएं कि इज ही और शी द बेस्ट सिबलिंग एवर, अगर है तो क्यों है, और अगर इज ही और शी द वर्स्ट सिबलिंग एवर, ऐसा है तो क्यों है। शायद वो आपकी चीज़ें लेकर लौटाते नहीं हैं या फिर बिना पूछे आपके पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं। आपके दोस्तों को आपसे ज़्यादा आपके सिबलिंग पसंद है एंड देट माइट जस्ट गेट ऑन योर नर्व, ऐसा कुछ है तो आपको हमें कॉल करना है ऑन 0800 0800 004866 पर एंड जस्ट लाइक दैट आप शामिल हो जाएंगे इन द ड्रॉ, जहां पर आप $250 घर लेकर जा सकते हैं ऑन द 28th of August। तो बस आपको इतना ही करना है और हमें कॉल करना है लाइव होने या फिर ऑफ एयर भी, अगर आप बुराइयां करना चाहते हैं अपने अपने सिबलिंग की तो आपकी बातें हम सुनने वाले हैं। फिलहाल आइए इस अगले गीत में शामिल कर लेते हैं पाम्स्टन नॉर्थ में ऐश। आपने खास इस गीत की फरमाइश की है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और आप आपके दोस्तों को आपके पूरी फैमिली को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं।
1: You're listening to Chikash.

ओशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के तहत जो मैचेस जारी है ओएफसी मेंस चैंपियनशिप लीग 2026 का, दीज आर ऑल अवेलेबल टू वॉच लाइव एंड फ्री ऑन फीफा प्लस, जो डिलीवर किया जाता है थ्रू दी DAZN प्लेटफॉर्म। तो अगर आप फीफा प्लस का ऐप ढूंढेंगे, देर इज नो मो, लेकिन DAZN का प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, DAZN ऐप आपको मिलेगा, एंड थ्रू दैट यू कैन वॉच दिस द गेम्स फ्रॉम ओएफसी मेंस चैंपियनशिप लीग 2026 लाइव एंड फ्री। सपोर्टर्स कैन वॉच बाय साइनिंग इनटू DAZN विद ए फीफा आईडी। इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव वन, यू कैन क्रिएट अ फीफा आईडी ड्यूरिंग द साइन इन प्रोसेस। नाउ दिस इज नॉट एन ऑफिशियल फीफा आईडी, दिस इज जस्ट ए लॉगिन आईडी जो आपको क्रिएट करना होगा वंस यू गेट द DAZN, गो टू DAZN वेबसाइट and create yourself a login to watch all the FIFA Plus free matches जो वहाँ पर आपके लिए डाले जाते थे। रक्षाबंधन के लिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। रक्षाबंधन सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हमारा एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, हेड ऑन टू आवर फेसबुक पेज, वहाँ पर हमने रक्षाबंधन का एक पोस्ट डाला हुआ है। उसके कॉमेंट सेक्शन में आपको एक फ़ोटो डालनी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट क्लोजली रिलेट्स टू यू एंड योर सिबलिंग। बहुत ही सेंटिमेंटल वैल्यू है शायद वो ऑब्जेक्ट का, या फिर उससे जुड़ी एक याद है जो हमेशा आपको हंसा देती है या फिर रुला देती है। तो उस मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट का फोटो आप डालें और कमेंट सेक्शन में आप 2 या 3 लाइंस सेंटेंसेस लिखें अबाउट द मेमोरी जो वो फ़ोटो लाती है। अपने सिबलिंग को आप टैग कीजिए एंड जस्ट लाइक दैट The winning story will be read live on air on the 28th of August along with the $300 cash giveaway for the winning comment. So, itna hi karna hai, $300 aapke naam ho sakta hai.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
6: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: Choice aapki hai at Winger Motors. Selected nay Omuda or Jeku models par paye 3.9% finance ya $2,000 cash back. Premium design, technology or zabardast value. Super hybrid

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: चार बजकर दो मिनट हो चुका है। रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। इफ़ यू जस्ट जॉइन, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा। रोवा पर हमें आप सुन रहे हैं। डू लेट मी नो कि आप देश के किस कोने में हैं। अगर आप आउट ऑफ न्यूजीलैंड हैं तो हेड ऑन टू आवर फेसबुक पेज और वहाँ पर जाकर आप शेयर कर सकते हैं कि आप इस समय दुनिया में कहाँ पर है। 3-4 बजने को आए हैं और आपका साथ हमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच। सवाल हमने आपसे किया था अबाउट द टीम वॉरियर्स अब द वाज। जितने भी लोगों ने लिखा है, थैंक यू सो मच, यू आर द ट्रू फैंस ऑफ आवर वॉरियर्स टीम जो आज शाम ब्रोंकोस का सामना करने वाली है। एंड इट्स गोना बी अ टफ वन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वॉरियर्स कम आउट विक्टर्स, व्हाई नॉट। तो और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में न्यूज़ हम शेयर करते चलेंगे ऑन दिस आवर एज वेल, राइट हियर विथ मी ऑन रेडियो पब।

0: lesbian.
1: Gift of Life Fiji. Look up this website और आपको पता चलेगा कि अगर आप Gift of Life Fiji को support करते हैं तो कितना नेक काम आप करते हैं. And one of the easiest way to support Gift of Life Fiji is through attending the Bhajan Jams live concert जो हो रहा है इसी शनिवार को 22nd August को 7 बजे से Vedic Center Teriru Glasgow Avenue Papatoetoe में. Ravitesh Deo and a team of very incredible artists ye aa rahe hain for an uplifting evening of devotional music, fusion bhajans and kirtans, jahan par aap experience karne wale hain traditional devotion brought to life through contemporary arrangements, talented vocalists and accomplished musicians, all in a vibrant live concert setting. South Auckland Driving Limited dwara ye कॉन्सर्ट लाया जा रहा है टुगेदर विथ एनजेड कल्चरल ट्रस्ट और दिस विल बी फॉर गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी. $30 टिकट्स है लेकिन इट्स वर्थ एवरी पेनी ऑफ इट. चिल्ड्रन अंडर 5 आर फ्री. स्नैक्स एंड कावा विल बी सोल्ड ऑन साइट और टिकट्स अवेलेबल है ऑनलाइन eventbrite.com या फिर आप जयज फ्रेश पापा टोमेटो जा सकते हैं, वैली फ्रेश पापा टोमेटो जा सकते हैं या फिर शिव प्रसाद इन कलस्टन, यहां से भी आप टिकट ले सकते हैं. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स क्योंकि ये एक बहुत ही मेमोरेबल नाइट रहने वाली है. एंड ऑल्सो वाइल एंजॉइंग यू विल बी हेल्पिंग आउट ऑल दी नीडी किड्स इन फिजी जिनको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है. तो लुक अप गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी एंड आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपको ये कॉन्सर्ट अटेंड करना बहुत ही जरूरी है. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Pub.
1: रेडियो पब का मजा आप ले रहे हैं एंड इफ़ यू गो टू आवर फेसबुक पेज राइट नाउ, मैंने वहाँ पर एक लिंक डाला है अबाउट वेल्थ ऑफ द नेशन. हाउ डू यू कंपेयर विथ अदर पीपल इन न्यूजीलैंड? क्या आप कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन आर यू वेल्थियर देन दोज अराउंड यू? आर यू इन द एवरेज एरिया या फिर यू आर डूइंग इट टफ इन दिस ईयर? क्या आप किस तरह से प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ? तो इसको लेकर वेल्थ ऑफ द नेशन सर्वे ये किया गया था बाय स्टफ एंड रिवील हुआ है कि 39% ऑफ न्यूजीलैंडर्स फील वर्स ऑफ फाइनेंशियली देन दे डिड अ ईयर अगो. तो 39% वर्स फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 61% ठीक ठाक कर रहे हैं एंड दैट्स मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इज़न्ट इट. So there's always two ways of looking at any scenario. Get onto Facebook, wahan par jaye us survey ko aap check out kar sakte hain. You can fill in your details, naam nahi dalna hai and no personal details, bas age bracket, kahan par hai aap, kitni aamdani aapki hai, ghar mein kitne log hai, ye sabhi kuch dal kar you can see ki aap kaisa kar rahe hain in comparison with other Kiwis in New Zealand. Go and get that done राइट नाउ. उस पोस्ट को आप लाइक भी कर सकते हैं एंड देयर इज ऑसम इंफॉर्मेशन इन दैट आर्टिकल एज वेल. तो गो एंड चेक इट आउट, इसको मैंने अभी फेसबुक पेज पर डाला है.

That's right, it's me, Jikash, here on Radio Pub and Rewa Football Club, साथ में Lay City Football Club. इनके बीच में खेल हो रहा है in Ba and Rewa Football Club is leading the match by 2-1. 80 minutes का खेल करीबन समाप्त हो चुका है. इस पर और भी अपडेट्स हमें जब मिलेंगे आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे.

0: You're listening to Chikash.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: Award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.

0: Radio Pop. Yo, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. हर शनिवार के दिन में 12 से लेकर 6 बजे के बीच में हम यहाँ पर आ जाते हैं टू बी विथ यू एंड टू एंजॉय विथ यू वाइल कीपिंग अपडेटेड विथ थिंग्स दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट. और फिर इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात होती है ऑन संडे नाइट मेलोडीज, मतलब कि कल शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मैं दोबारा यहाँ पर आ जाऊँगा अगेन आपका हम सफ़र बनने के लिए, आपका साथ देने के लिए. और तब भी हम बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट व्हाट थिंग्स हैव हैपेंड ड्यूरिंग द वीक, आने वाले सप्ताह की तैयारियां करते हैं. एंड आई फिल यू इन विद बिट्स एंड पीसेस, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए या फिर जो चीज़ें जानकर आपको खुशी होती है या फिर आश्चर्य भी होता है. तो जो भी आप चाहें आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, ट्यून इन कर सकते हैं ऑन 104.2 FM या फिर रोवो के ज़रिए हमें आप दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकते हैं. इस घंटे की शुरुआत करते हैं विद सचेत की आवाज़. और बिफोर दैट, गुड न्यूज़ फॉर द रेवा फैंस. तंबू सोरो एफर्ट किया रेवा ने और दे हैव क्रॉस्ड द ग्रुप स्टेज बाय डिफीटिंग ले सिटी बाय 2-1. लेकिन अब क्या, वेल अ हैवी हिटिंग सेमीफाइनल शोडाउन अगेंस्ट Auckland City. Rewa versus Auckland City, that will be happening in the semi-finals of the OFC Champions League 2026.
1: Hum par aapke saath hain Jikash.

0: Hollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The weekend of Indian independence and Pakistan independence, and also Navroz, and on this occasion bahut hi badhiya badhiya films release hui hai. Aur these films jo main baatein kar raha hu, badhiya badhiya maine kaha do bar, kyunki do film release hui hai, Awara Pantu and Batwara. Ye filhal cinema gharon mein chal rahi hai, and it's early days to say which one has defeated the other, kyunki do alag genre ki movie hai. And for Batwara, I think it was a great time, a good timing to choose this weekend, kyunki it is based on the events of Indian independence and released on the same weekend. Dusri aur Awarapan 2, 19 years later, Shivam, played by Imran Hashmi, has returned to the crime world. तो इस पर हम और कुछ खुलासा नहीं करेंगे. द म्यूज़िक एंड दिस मूवी, ये सही टक्कर देने वाली है बटवारा को. बटवारा को लेकर कई बातें भी सामने आई थी कि कुछ सिनेमाज़ ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन इट डिडंट हैपन इन इंडिया. नेपाल के कुछ रीजन्स में बटवारा 1947 को बैन किया था या फिर स्टॉप किया था ड्यू टू इनिशियल सेंस अबाउट डिस्प्यूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्लिक्ट्स. लेकिन बाद में चलकर डिस्ट्रीब्यूटर्स दे लेटर रिजॉल्व इश्यूज टू क्लियर स्क्रीनिंग्स इन सेलेक्ट रीजन्स विदाउट कट्स, वाइल टिकट होल्डर्स अफेक्टेड बाय इनिशियल कैंसिलेशंस वेयर ऑल ऑफर्ड फुल रिफंड्स.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
3: Kya banate hain kebab ko special, Chef Alex?
2: Perfect blend of spices, tender meat aur fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
3: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
2: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
3: 100% authentic and pure as mother's love.
4: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
6: Join our tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
6: join our tribe!
7: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
8: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।

0: Radio Pub.
1: नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप कैंटरबरी की जीत आज हुई बे ऑफ प्लेंटी से. कैंटरबरी के जो खिलाड़ी है रिची मोंगा, ही गॉट द ऑल ब्लैक्स कॉल एंड ही हैज फ्लोन ऑफ टू साउथ अफ्रीका. उसके अलावा ऑकलैंड और हॉक्स बे के बीच में खेल जारी है. 10 मिनट्स इनटू द मैच हॉक्स बे आर लीडिंग बाय 7 पॉइंट्स टू नील. ऑकलैंड वालों क्या कर रहे हो? Are you watching this match live? If you are, हमें मैसेज करें और बताएं कि आपके साथ कौन है जो इस मैच को देख रहा है, क्योंकि ब्लूज़ की शर्मनाक हार जो हुई है इस साल सुपर रग्बी में, शायद उसके बाद में अब यू हैव रिजोर्टेड टू वॉचिंग एनपीसी ताकि ऑकलैंड रग्बी टीम से कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी को उठाकर आप ब्लूज़ टीम में डाल सके. वेल एनीवेज, हॉक्स बे लीडिंग बाय 7 पॉइंट्स टू नील.
2: Sugar daddy.

0: हम पर रेडियो पब का मजा ले रहे हैं। एनपीसी से हटकर एनआरएल की ओर आते हैं तो रेडर्स और शार्क्स के बीच में भी खेल शुरू हो चुका है इन एनआरएल, और फिलहाल रेडर्स की जीत शार्क्स से 12-8 से हो रही है।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की

फेसबुक पर हमने एक पोस्ट डाला है अबाउट वेल्थ ऑफ नेशन सर्वे, एंड इसमें कुछ की फाइंडिंग्स है जो आप चेकआउट कर सकते हैं. जैसे कि इनकम बूस्ट नीडेड, हाफ ऑफ कीवीज सर्वेड स्टेटेड दे रिक्वायर अ हाउसहोल्ड इनकम बूस्ट ऑफ 10 to 50,000 dollars टू मेक मीनिंगफुल डिफरेंस इन देयर एवरीडे फाइनेंसेस. भाई ये कौन नहीं चाहता, हाफ ऑफ कीवीज, मतलब अगर 10 लोगों से पूछा गया तो 5 ने कहा है कि हाँ मुझे 10 to 50,000 dollars एक्स्ट्रा चाहिए, और 5 लोगों ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. हाउ डज दैट वर्क, आई वंडर किसको 50,000 नहीं चाहिए. एनीवेज यू कैन चेक आउट द वेल्थ ऑफ नेशन सर्वे जो हमने लिंक शेयर किया है ऑन फेसबुक, एंड सेंड अस योर थॉट्स इन द कमेंट्स कि आपको इस सर्वे के बारे में जानकर कैसा लगता है, एंड हाउ डू यू फेयर, आप कैसा कंपेयर करते हैं इन दैट सर्वे. वहाँ पर एक लिंक है, उसमें जाकर आप अपना डिटेल्स डालें. दिस नथिंग पर्सनल जो आपको डालना है, बस आपका एज ब्रेकर, आपका इनकम ब्रेकर, आपके घर में कितने लोग हैं, कहाँ पर आप रहते हैं, ये सब डालें, एंड देन इट विल कम अप विद सम स्टेप्स फॉर यू.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
4: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
3: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
5: आवारापन
3: रेटिंग TBC।
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
7: कभी भी कहीं भी।
8: रेडियो
7: पॉप।
9: रेडियो पॉप में मैं जी काश आपका साथ दे रहा हूँ। नाउ टाइटैनिक, ये मूवी तो काफ़ी लोगों ने देखी है, काफ़ी लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा ये मूवी, कि इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, ये हिस्ट्री है। एंड एक एग्जीबिशन अभी लगा हुआ है ऑकलैंड में, titanicexhibition.com लुकअप कीजिए, क्योंकि August 28th से ये एग्जीबिशन लाइव हो जाएगा। इसका सेटअप अभी जारी है और टिकट्स बिकने शुरू हो चुके हैं titanicexhibition.com, जहाँ पर यू विल बी स्टेपिंग इनसाइड द टाइटैनिक्स ट्रू स्टोरी। यहाँ पर आप ऑथेंटिक आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम टाइटैनिक ये डिस्कवर करने वाले हैं, लाइफ साइज्ड रिक्रिएशंस एंड द रियल स्टोरीज ऑफ इट्स पैसेंजर्स। ये सभी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो हेड ऑन टू titanicexhibition.com। और दिस एग्जीबिशन इज क्रिएटेड बाय म्यूजियलिया एंड टाइटैनिक हिस्टोरियन and expert Claes Goram Waterholm, and this experience separates fact from fiction like never before. An audio guide in English will serve as the narrator that will guide you throughout the experience. Testimonies of passengers and crew will take you back to 1912, unravel the true story of the ship as you embark on a trip through time, bringing you closer to myths. So agar aap ek aise vyakti hai that has been फैसिनेटेड बाय टाइटैनिक, बहुत ही दुखद दुर्घटना थी जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी व्हेन दिस शिप सैंक, तो आपको ये एग्जीबिशन चेकआउट करना है। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग माई फैमिली एंड हैविंग अ लुक थ्रू दिस एग्जीबिशन एज वेल। तो titanicexhibition.com, दिस विल बी डॉकिंग इन ऑकलैंड। एंड कुछ लोगों ने सोचा कि भाई टाइटैनिक की तरह एक और एक शिप आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक एग्जीबिशन आने वाला है जो 28 अगस्त से लाइव होने वाला है।
7: हम पर आपके साथ हैं चिकाश।

0: फोन पर आपके साथ है जिकाश।
1: किसी ने सवाल किया है कि व्हाट इज दैट समथिंग यू सेड अबाउट इनकम एंड समथिंग टू फिल इन। वेल देयर इज जस्ट अ वेबसाइट जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ यू आर डूइंग इन कंपैरिजन विद अदर कीवीज इन न्यूजीलैंड, कि आपका आपकी आमदनी जितना है, आपका खर्च जितना है, एंड जिस एज ब्रैकेट में हैं आप कैसे कंपेयर करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जाइए हमारे फेसबुक पर, हमने यहाँ पर एक लिंक शेयर किया है, हैव अ रीड, एंड उस आर्टिकल के नीचे पर आप अपना डिटेल्स डालकर देख सकते हैं कि हाउ यू आर डूइंग इन कंपैरिजन विद अदर पीपल इन न्यूजीलैंड। हमारा तो यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया सिंस 12 o'clock, और आज है 15th of August। एक बार फिर से जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी इंडिया के लोग यहाँ पर हैं, आप सभी को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आशा यही करते हैं कि यू रिफ्लेक्ट ऑन द हार्डशिप्स दैट आवर फोर फादर्स वेंट थ्रू टू फाइट फॉर फ्रीडम, और इस फ्रीडम की कदर आप करें, एक दूसरे की भी इंडिपेंडेंस को आप रेस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं कि भाई हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन पर्सनली क्या आप दूसरे की इंडिपेंडेंस को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना खुद की इंडिपेंडेंस को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस बात को आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए, और एन्जॉय करते रहे इंडियन इंडिपेंडेंस डे, रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरीज, ऑन द हार्डशिप्स एंड द फ्रीडम दैट यू हैव गॉट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो 80th इंडियन इंडिपेंडेंस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबादें हम आप सभी को दे रहे हैं फ्रॉम मी जिकाश एंड द एंटायर टीम ऑफ हम FM। हम आपसे आप मिलेंगे कल शाम 6 पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, एन्जॉय द रेस्ट ऑफ सैटरडे, एन्जॉय द रेस्ट ऑफ दिस वीकेंड, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे, यही हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट नाइट।

0: भी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
3: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
0: Non-stop Bollywood.
4: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बस।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहता।

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
6: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: 19 साल बाद शिवम इज बैक. अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
10: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
9: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म.
10: आवारापन
9: रेटिंग TBC.
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Single white switch, just $3. Clear silicone sealant, just $4. Painter's masking tape, just $2. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
12: Trade Depot.co.nz.
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
14: Zabardast hits.
15: Shuru ho jaye to rukte nahi.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Hum.
14: Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

0: Hollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: We gotta go. Are you ready?
3: Come and take a trip with me.
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
8: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
9: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoy. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy, or Shri Prasad, Kelston.
10: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाएं

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
0: टाइट वेरी टाइट।

0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और वेटाकरे।
2: अच्छा, Hunua वेस्ट में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: the DJ Mix.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: Party up, no. This is DJ Mix.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
0: The DJ Mix, only on Hum.

0: Crispy on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: आपके मुश्किल खड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out, एक national campaign जो mental health पर खुलकर बात करने पर encourage करता है। Call Asian Family Services Helpline at 0800 862 342 या visit करें asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shiv Prasad, Kelston.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ, अच्छा?
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह का।
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz।

0: 27. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz। नाइट फ्लाइट

चल चल चल चल चल चल झपठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक। प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू, सुपर हाइब्रिड

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
9: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
10: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
9: आवारापन 2, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म। आवारापन। रेटिंग TBC।

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Crispy on Rover, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Playing Bollywood's biggest hits.

तू समझता है जिनको मेरे हैं तेरे घर के यही लुटेरे हैं। बदला ये तुझसे तेरे बस एक बार लेंगे

चेहरे खामोशा में लेके जाएंगे, रख के चुपचाप अंधेरे में चले आएंगे, फिर तेरे होश हवास

सुनिए हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक इस समय हूँ अर्जव के साथ. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट करते हैं ऑन देयर फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो कि होने वाला है इस सैटरडे और संडे को 22nd और 23rd अगस्त ब्रैकनहेड स्काउट्स हॉल में. एंड ये टूर्नामेंट सब के लिए है, ऑल लेवल्स, बिगिनर या फिर प्रोफेशनल. एंड इफ़ यू लव टू रजिस्टर और इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक में जाकर न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन को सर्च कीजिए, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो और आप कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हो एनजेडसीए प्रेसिडेंट पंकज जी को एट 021-090-85067 पर. सो 021-090-85067 पर. एंड या पार्टिसिपेट, क्योंकि आई डोंट नो कि कैरम की भी टूर्नामेंट होती है अंटिल आई सॉ हमारी ये मीटिंग में, हम की मीटिंग में. एंड आई फाउंड आउट कि यहाँ पे कैरम टूर्नामेंट होता है एंड दैट्स सो कूल, क्योंकि आई नो कि ये कैरम सो मेनी पीपल के लिए एक नॉस्टैल्जिक गेम है. द लास्ट टाइम आई प्लेड कैरम बोर्ड वाज प्रोबेबली 15 इयर्स अगो नेपाल में एंड इट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव, पाउडर डाल के यू नो, एंड आई वाज नॉट दैट गुड, बट आई वाज लाइक I got this. I used to be very like competitive, but yeah, if you'd love to participate, just head on unki Facebook page mein Newsland Karam Association ya fir aap call kar sakte ho at 021-090-85067.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
1: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
8: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
9: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
10: आप सुन रहे हम प्ले बॉलीवुड स्पीकर सेट समय और अर्जव के साथ. इफ यू लाइक टू एक्सपीरियंस भजन लाइव, वो भी शाम में 7 PM से, लाइक इट्स लाइक अ कॉन्सर्ट बेसिकली. इस सैटरडे 22 अगस्त को वैदिक सेंटर में 32 क्लास का एवेन्यू पपटोय. टिकट्स आर $30 and children under 5 are free, and there's going to be snacks and kava to be sold at the venue. यहाँ पे Ravitesh Deo and an incredible live band will be playing an uplifting music, devotional music, fusion bhajans, kirtans, and it's going to be an evening to remember. So, bahut acha hone wala hai, maza aane wala hai, aur saath mein, you know, bhajan ke saath, how good. Aur ye traditional devotion aapko contemporary arrangement ke saath hoga, with talented vocalists bhi and amazing musicians. It's going to be so vibrant. So if aapko tickets leni hai, then online se aap le sakte ho, eventbrite.com se, ya fir aap in person aapko book karni hai, then you can go to Jay's Fresh Papatoy ya fir Valley Fresh ya fir Shri Prasad Kelston mein. And yeah, bring your family and friends for a very memorable evening at Vedic Center, 7 PM is Saturday 22nd August ko.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉल विद स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजो आपके साथ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस आउट देयर ऑब्वियसली आई नो कि इंडिपेंडेंस डे कल था बट ऑब्वियसली शो तो आज ही है एंड आई जस्ट वांट टू विश ऑल द फेलो इंडियंस आपकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस डे दो मूवी रिलीज हुआ था For Independence Day, it was Awara Pando with Imran Hashmi aur dusra wala tha Sunny Deol ki Patwara 1947. And obviously, Awara Pando was taking a strong lead for bookings ki hisab se. And although all over India, distributors have agreed on doing a 50-50 screen sharing, you know, like split mein. So it's fair for both the movies. But let me know, aap kaun si movie ke liye excited ho? Which movie have you already watched? Ya fir kaun si movie aap pehle watch karenge in the theaters?

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हुआ आपके साथ एंड रक्षाबंधन इज कमिंग सून ऑब्वियसली 28 अगस्त को इफ यू डोंट नो एंड इफ यू लाइक मी जिसने अभी तक राखी भी नहीं खरीदी है या फिर गिफ्ट्स भी आई गॉट यू क्योंकि इफ यू कैन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू विन $300 कैश विद हम सो लिसन आउट एंड आई विल टेल यू मोर डिटेल्स अबाउट इट आफ्टर सॉन्ग
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ू आपके साथ एंड रक्षाबंधन नेक्स्ट फ्राइडे है 28th of August एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर सेलिब्रेटिंग इट बट इफ यू लाइक मी जिसने अभी तक राखी भी नहीं खरीदी है या फिर गिफ्ट्स देन दिस इज अ good opportunity for you to win $300 cash so you can you know put that in your gifts and all that so all you have to do is hamari facebook page mein jaiye it is hum 104.2 fm or facebook page mein jaakar we have a post jahan pe aap apni photo upload kijiye a meaningful gift in the comment section and also write 2 to 3 sentences about the memory attached to it it could be Any memories with your siblings? Siblings ki obviously bonds. It's never defined by an expensive gift. It could be anything. Aapki sister ki hand me down. You know, I'm an older sister, so my younger sister used to always get my kapre. So maybe it's an old T-shirt. Ya fir ek, I don't know, a matching key ring, keychain. Ya fir anything that's very meaningful and is very sibling coded. आप हमारी पिंड फेसबुक पोस्ट में फोटो का नाम है अ लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट उसके नीचे आप आपकी स्पेशल फोटो कमेंट में डालिए और उसके बाद राइट 2 to 3 सेंटेंसेस अबाउट द मेमोरी अटैच टू इट एंड ऑफ कोर्स टैग योर सिबलिंग एंड यूर ऑटोमेटिकली इन द ड्रॉ टू विन $300 वेरी ईजी एंड आई एम लुकिंग एट द पोस्ट ऑनेस्टली कॉम्पिटिशन उतना टफ नहीं है You might be winning. You never know. So make sure aap hamari Facebook page mein jaiye and and do it. By competition tough nahi hai. I mean like there aren't a lot of people who have entered. So that means aapki chance high hai. You know what I mean? But anyways, let's get back into the music.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स से समय हुआ रिजर्व के साथ एंड आई नो कि यहाँ पे ढेर सारे फीजियंस सुनते हैं लिसनिंग इन टू हम एवरी डे सो शाउट आउट टू ऑल द फीजियंस आउट देयर बट वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल प्लेलिस्ट आपके लिए इफ यू आर इनटू फीजी Kirtan artists. So we have a playlist on Rova, R-O-V-A, on App Store ya fir Play Store. Aap download kar sakte ho. And wahan pe we have a Hum Fiji Kirtan Sangraha playlist. And we have added a new pool of kirtans by Avinash Chand, Sonam Bali, Sanjay Shanil Chandra, Manjit Prasad Milan,

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: South Oakland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sir, $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Oakland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy or Shiv Prasad, Kelston.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ, अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड एक रूमर था धूम 4 की, जहाँ पे दे वर सेइंग कि रणबीर कपूर इज गोना बी प्लेइंग द एंटागोनिस्ट द गुंडा ऑफ द मूवी एंड दैट ही वाज गोना अंडरगो अ मेजर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. बट टर्न्स आउट ये सब फेक था, क्योंकि रणबीर पुट एंड द रूमर एट द सैन डिएगो कॉमिक कॉन सेइंग दैट ही इज इनडीड नॉट पार्ट ऑफ धूम 4 एंड दैट ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन हिज नितेश तिवारी की रामायणा और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर. एंड या डैम ऑनेस्टली धूम 4, आई डोंट केयर इफ रणबीर कपूर इज इन इट और ना, बट लाइक आई रियली वांट टू सी धूम 4 एंड आई विश आई होप ऋतिक रोशन एंड यू नो उदय चोपड़ा इज अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज फॉर मी धूम, I don't know, I have more memories of Dhoom, yeah, with like obviously Abhishek Bachchan, Uday Chopra, Hrithik Roshan, Aishwarya Rai. Yeah, I want them to bring them back. It'd be so cool. What do you think? 5599, man, please send DJ. And talking about Dhoom 4, I had a little research and I thought it was just a rumor, but turns out actually man, Aditya Chopra or writer Sridhar Raghavan are actively developing the script. So it is in the works and they are treating it, they are working on it. So fingers crossed ki it happens soon. But yeah, no one knows who's going to be casted in this film, Dhoom 4 mein. But fingers crossed we get some of our OG members in it. Kyunki, you know, Dhoom is incomplete without Abhishek Bachchan or Uday Chopra, let's be honest. But reminiscing about Dhoom, let's listen to one of the I guess one of my favorite Dhoom songs.

0: is Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक सेट समय हूँ आरजव के साथ एंड नेक्स्ट अप आई विल बी टेलिंग यू ऑल द अमेजिंग बॉलीवुड फिल्म्स कमिंग हियर इन आउटियारोवा थिएटर्स सो या स्टे ट्यून्ड

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल विद स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ू आपके साथ एंड नेक्स्ट अप आई बी टेलिंग यू हाउ यू कैन विन दो रिटर्न टिकट्स टू वनुआटू विद सोलोमन एयरलाइंस एंड आल्सो गेट $1,000 स्पेंडिंग मनी यप इट्स हैपनिंग सो आई विल लेट यू नो मोर सून

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड स्पीक सेट समय हूँ आज आपके साथ एंड लास्ट थर्सडे आई वाज ड्राइविंग होम एंड आई वाज लिसनिंग टू हम एंड मुझे एक बहुत एक रियलाइजेशन हुआ कि ओ माय गॉड दिस सॉन्ग आई फॉरगॉट अबाउट दिस सॉन्ग आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग एंड आई हैड टू क्विकली गो एंड डाउनलोड द सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग वाज दिस.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल इस वीक सेट समय हो आज आपके साथ द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट करते हैं फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट में इस सैटरडे और संडे 22nd और 23rd अगस्त को एट द बर्किनहेड स्काउट्स हॉल और ये सभी लेवल के लिए है बेसिकली बिगिनर्स से प्रोफेशनल तक या फिर लाइक मी समान जिसने बचपन में खेला था बट आई हैवंट टच्ड द बोर्ड इन द लास्ट 5 years ऑन एक्चुअली नॉट 5 years लास्ट 12 years plus. So, easy hai aapko register karne ke liye. All you have to do is, Facebook page mein jaakar. Unki Facebook page ka naam hai New Zealand Carom Association. Wahan jaakar you can message them and to register. Ya fir if you want to know more information as well, you can do that there. Ya fir aap direct call ya message kar sakte hai unki president ko, jo hai Pankaji 021-090-85067. That is 021-090-85067. Yeah, so it's whether you're a seasoned player, yeah, if you're a complete beginner, it's gonna be a fun day. So yeah, good luck.

0: meter.
1: आप सुन रहे हैं प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट से मैं हूं आरजू आपके साथ एंड रक्षाबंधन है नेक्स्ट फ्राइडे को 20th अगस्त एंड वी हैव अ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू सो बेसिक क्या होगा कि वीकडेज में व्हेन यू गेट द क्यू टू कॉल मेक श्योर यू कॉल अस एंड देन यू कुड बी गोइंग लाइव ऑन एयर To give your sibling the official performance review, it could be anything from best or worst sibling ever, reviewing them on things like borrowing your stuff without asking, or maybe getting you into trouble. So once you share your review, you'll be in the draw to win cash money. Two lucky winners go $250 milega, $250. And the winners will be drawn on 28th August. So this time. So make sure when you hear Vijay or Pooja ya fir Kashika ji ya fir Ketan or Sandy or Rizbe, mention it. Make sure you call and give your siblings the review. And you could be going home with $250 cash on Rakshabandhan Day. That is 28th

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स इट्स समय हुआ आज आपके साथ एंड क्राइम पेट्रोल इज वन ऑफ दोज सीरीज दैट आई ग्रो अप वाचिंग विद यू नो लाइक सीआईडी क्राइम पेट्रोल एंड आई हैड नो आइडिया कि क्राइम पेट्रोल अभी तक जा रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीजन नाइन भी कंप्लीट हो चुका है एंड द नेक्स्ट होस्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड और ये नेक्स्ट क्राइम पेट्रोल की होस्ट है अजय देवगन और उन्होंने शेयर किया है कि कमिंग टुगेदर विद अ शो लाइक क्राइम पेट्रोल फील्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माय फैंस एंड व्यूअर्स द शो हैज़ बिल्ट अ लेगेसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्राइम स्टोरीज व्हाइल ड्राइविंग अवेयरनेस अमंग व्यूअर्स एनकरेजिंग देम टू बिकम मोर विजिलेंट अबाउट द पीपल अराउंड देम एंड हु दे इंटरैक्ट विद एंड ट्रस्ट एज वी ब्रिंग टू द फोरफ्रंट सम ऑफ द स्टोरीज इंस्पायर्ड बाय द केसेस दैट हैव शेकन द नेशन आई होप एंड बिलीव दैट आई कैन हेल्प एंड गाइड द ऑडियंसेस टू नेविगेट देम विद कॉशन रादर देन फियर वाओ सो ही इज गोना बी in the new Crime Patrol ki season and ye nayi episode actually 31st August isi mahina start hone wala hai only on Sony TV channel

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
3: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power women's refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
5: Big Save sells New Zealand's best value beds, and today we're having a massive bed sale. Single beds from $5.99, queen beds from $8.99, cooling beds on sale, electric adjustable beds with anti-snore and massage functions on sale, single bunks from $3.99. Plus we have stock of all bed sizes. Save hundreds on New Zealand's best value beds today, only at Big Save.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरज़ आपके साथ एंड अक्षय कुमार हैज बीन बिजी हीज बीन बुक्ड एंड बिजी क्योंकि यू नो रिसेंटली ही हैवान जो कि है सैफ अली खान और अक्षय कुमार की ये एक नई मूवी जो दे आर गोना बी प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट ऑन दिस फिल्म ये इसकी ऑफिशियल टीजर recently drop hua tha and it has just been informed that Akshay Kumar has already started shooting his nayi film alien thriller film jiska naam hai Samook in London so yeah wow I'm excited for this to be honest main like the last alien movie Bollywood mein I've watched is if you consider, obviously it is, what is, Koi Mil Gaya. So that's my last alien movie. So I'm excited about this one. And I've also heard rumors about this going to be Krish 4. Who knows? But I would love to see that.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
8: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
9: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: And award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
14: मुझे भी।
13: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
15: Brewing good vibes, Sunday style.
0: Sunday breakfast on Hum.
15: Zaika to feel ho. Tickle your taste buds.
16: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ू आपकी साथ एंड रक्षाबंधन नेक्स्ट फ्राइडे को है। यप, इफ यू फॉरगॉट देन दिस इज योर रिमाइंडर की नेक्स्ट फ्राइडे है। मेक श्योर यू गो एंड गेट योर गिफ्ट्स एंड स्टफ। बट I actually have a cool opportunity. आपको $300 कैश आप जीत सकते हो हमारे तरफ से रक्षाबंधन की ऑफिसर में। But I'll let you know more about it after two songs. आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ू आपके साथ। नेक्स्ट फ्राइडे इज रक्षाबंधन। इफ यू डिडंट नो, यू वेलकम। इट इज हैपनिंग नेक्स्ट फ्राइडे 28 अगस्त को। एंड इफ आपने अभी तक गिफ्ट्स नहीं खरीदी देन डोंट वरी, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक you know, giveaway hai that you might love it. So if you go to my Facebook page, jiska naam hai Hum 104.2 FM, wahan pe we have a pinned post Rakshabandhan ke special ke liye. Basically what you have to do is easy peasy, aap jahan wo page mein, wo I guess post mein jaakar, you have to upload a photo of one meaningful object, something related to your memories with your siblings. For example, एक सी डी की फोटो दैट यू एंड योर सिस्टर ब्रदर लव्ड लिसनिंग टू, या फिर एक पुराना टी शर्ट जो आपने अपनी भैया से आपने पाया था, या फिर आपकी सिस्टर से, एनीथिंग। एंड यू पोस्ट दैट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट की फोटो एंड राइट 2 to 3 सेंटेंसेज अबाउट द मेमोरी अटैच टू इट, सो वी कैन ऑल्सो नो कि वो क्या मेमोरी था आपको, कि क्या आपको बहुत स्पेशल लगा। सो आफ्टर यू डू दैट एंड मेक श्योर यू टैग योर सिबलिंग इज वेल, सो आफ्टर दैट you are in the draw to win $300. And also, looking at the post, I can say that, honestly, aapka jeetna chances high hai. By You know why I'm saying that? Because वहाँ पे a lot of comments नहीं है. That means आपकी chances high है. So if you're listening to this, this is your sign to go to that post or comment कीजिए. It's gonna just take what, like 2-3 minutes, and उसके बाद yeah, you're in to win $300 cash. How good? So yeah, please आप जाइए Facebook में and enter. It's gonna be easy money if आप वो जीते. Smiley.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स मैं हूं आरज़ाव के साथ एंड आज 16th ऑफ अगस्त है ऑब्वियसली अ डे आफ्टर इंडिपेंडेंस डे एंड आल्सो द बर्थडे ऑफ थ्री इनक्रेडिबल टैलेंटेड पीपल ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला एक्चुअली वो दोनों ही 1970 में बॉर्न हुआ था सेम डे सेम ईयर सेम मंथ वाओ ट्विंस और डेविड धवन भी एंड ऑब्वियसली इनक्रेडिबल डायरेक्टर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के So to celebrate that, I would love, love, love to play a song from a movie each. So let me know, please, 5599, which song you want to listen of Manisha Koirala, what song you want to listen of Saif Ali Khan, or what song you want to listen from any of David Dhawan's movie. 5599, and let's play those songs.

आप सुन रहे हैं प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक सेट समय हुआ आज आपके साथ एंड दिस आवर वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग सैफ अली खान मनीषा कोइराला जी और दिव्य धवन जी की बर्थडे एंड आज उनकी बर्थडे है तीनों की सो यू नो व्हाई नॉट लेट्स डू सम रिक्वेस्ट्स ऑफ देयर मूवी के गाने सो वी प्लेड सैफ अली खान का सॉन्ग ओ सॉरी नॉट सैफ अली खान दिव्य धवन जी की सॉन्ग वो है तन तनातन फ्रॉम जुड़वा मूवी सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मनीषा जी की भी बट बिफोर दैट आई विल बी टेलिंग यू अ फन फैक्ट मनीषा जी belongs to Nepal. She is from a Nepali like me and we are so proud of her that she made it so big in Bollywood. And actually unki grandfather was the prime minister of Nepal once upon a time. And anyways, those were the fun facts and now it's time for the song that's been most voted for Manisha ji. It is from the movie 1942 A Love Story. Yep, you guessed it right. Kuch na kaho. Enjoy.

0: driving you home. Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW Havel and Omura Jaku.
4: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Winger Motors are your home of cherry, jahan nahi

0: NZ. Offer ends August 31st.
1: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के
3: Chill, sip, smile.
4: This is Sunday Breakfast.
5: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स एट समय हूँ आरज़ू आपके साथ आई होप यू एंजॉयिंग ऑल दीज डेडिकेशंस टू दीज इनक्रेडिबल आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड सैफ अली खान की बर्थडे है आज मनीषा जी की बर्थडे मनीषा कोइराला ऑल्सो डेविड धवन जी की वी हैव डन सम रिक्वेस्ट फॉर मनीषा जी की सॉन्ग्स डेविड धवन की सॉन्ग्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सैफ अली खान And we have a winner. The song that's been chosen is Ole Ole from Ye Dilagi, one of the most iconic song. And yeah, it's from the 1994. And before that, a little quick fun fact. Saif Ali Khan ki actual mein unki debut film, obviously it was Parampara, but before that it was gonna be Bekhudi. And it was his debut was gonna be in 1992 instead of 1993, but the director fired him. Whoops! After the first shooting schedule, because he wasn't taking it seriously, and obviously he probably pissed him off. But you know, he still got the chance, and he was like it's meant to be. So next year, unhone debut kiya tha Parampara ke saath 1993 mein, and yeah. Anyways, this is an incredible song, Ole Ole from Ye Dilagi.